आजा शाह नहीं दिम रहे राजा शाह था ना था जगांजर तोरा सिंह बुरा ते थे नारो वजा शाह नहीं दिम रही नांग रंग वर्ग नगवा वारंग गुर रंग रंग ना मेरे कथा हो बिन नाम से नाम और जुनी यू हा ना मेरे दजी बिन नाम से